0: ऐसे नहीं रोते, मैं हूं ना आपके साथ।
1: सनिगम श्रेया घोषाल बेबी अपर्णा, मैं ऐसा ही हूँ चिटवाटे तो मैं कितने गाने